0: चलता फिजी रेडियो और मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मस्त सॉन्ग्स कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें दोस्तों साथियों को स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के सेल लाइव स्ट्रीम में मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और ये हमारा 698 जो एपिसोड है विद प्लेन्स मीडिया जी हां मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और मेरे साथ में पैनल में साथ देने वाले हैं साहिल और हम कुछ गेस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं सो देयर विल बी अ गेस्ट टुडे हम जिसके साथ में बात करेंगे एंड इट इज विल बी क्वाइट डिफरेंट टू द अदर इंटरव्यूज बिकॉज दिस टाइम शायद के बाद में इवन साहिल माइट अग्री कि पहली मर्तबा है कि जो हमारा गेस्ट है जिससे हम इंटरव्यू या बातचीत करने वाले हैं शी इज लाइक 8 इयर्स ओल्ड
1: जी हां
0: And definitely, so that will be quite exciting. So we'll be talking to Hamuse Kenge, little Aroha, and she is the junior Miss Aotearoa, New Zealand 2026 winner. Kafi badi baat hai ki someone goes from Christchurch or and she competes with 14 other participants and brings the crown back to Christchurch. So congratulations to Aroha, and usse hum thodi der mein baat karne wale hain, and she'll be coming with her parents, Kiran. Proud parents Kiran and Maitri. Jiha, aur is program mein hum we will try to keep that interview for maybe 15-20 minutes kyunki uske baad mein we are going to play a recorded interview jo maine kiya tha with honorable Todd Meckley the minister jo associate minister for foreign affairs and the minister for trade and forestry usse hum baat chit jo kiye the so wo aapko hum is frequency mein sunayenge aur agar aapko youtube jo video agar dekhna then it's on youtube aap baad mein dekh sakte ho and jo link wagera hum dal denge when we complete the facebook jo video but is program mein you are going to hear that as well ji ha jisme hum jo baat kiye the about a free trade agreement ji ha kuch charche mein hai but I think in that interview we were glad because we could hear or take the information directly from the minister aur usne hame jo jankari di hai ki what it means for New Zealand but at the same time what it means for India aur agar kuch programs hai jahan pe aap jana chahte ho ya aapke paas agar waqt ho if you have missed out then don't forget Mother's Day is happening tonight at Prebbleton Hall 617 Spring Road jo ye arranged by Canterbury Melody Makers you can go and have participate or have fun aur दूसरी जो जानकारी में देनी है विच इज कमिंग अप जो नेक्स्ट वीक रहेगा 16th ऑफ मई माँ भागवती चौकी जो पंडित अश्वनी महाराज जी आने वाले हैं दैट इज गोइंग टू हैपन हियर टेम्पलटन हॉल तो वहाँ पे आप जा सकते हो और भी जो काफी इवेंट्स है अनफॉर्चुनेटली आज तो हम बहुत नहीं कवर कर पाएंगे जैसे जो बांसुरी है थिएट्रिकल हम कहेंगे ड्रामा है वर्ल्ड ड्रमिंग फेस्टिवल है एंड देयर आर अदर थिंग्स कमिंग अप लाइक हरियाली तीज का भी डेट्स वगैरह निकल चुका है मैंने आज देखा जो सेल्विन तीज उसका भी जो डेट्स निकल चुका है सो ऑल दोस जो आपको पोस्टर्स हमारे फेसबुक पेज पे मिलेंगे जलसा फिजी रेडियो फेसबुक पेज उस पे आप जो जानकारी ले सकते हो एंड आज हमारे पास बहुत समय तो नहीं होगा बट जस्ट क्विकली साहिल द रिजल्ट बिटवीन क्रुसेडर्स एंड ब्लूज लास्ट नाइट
1: काफी अच्छा रहा 36-20
0: इट वाज अ गुड गेम
1: क्रुसेडर्स भी बहुत दिन बाद जाके अपन थोड़ा अच्छा खेली से स्पेशली लास्ट 10 मिनट्स जब लगे So you play a down
0: rate. Which is good. At the same time, I think Dhruva is not doing bad. They won their last game and they have, I think, three games. I think
1: two games.
0: Two?
1: Okay. So basically, he will buy here and then I think there's two more games.
0: Okay.
1: And I think Crusaders ke teen game bacha hai. And new stadium's pretty good.
0: Yeah, no, definitely. So, unfortunately, we don't have much time. Sahil has come really prepared.
1: Aaj Auckland aur uske Adelaide ke UPS semi-final.
0: Okay.
1: Soccer A-League. Mm-hmm. So that's interesting. 6 baje se.
0: Yeah. So there you go. So those are the sports information from Sahil. We say Sahil ke paas to kafi jo updates hai. Kafi din ho gaye. Like we have been missing him. And jab aaya hai, then he has a lot to talk. Unfortunately, hum usko bahut samay nahi de payenge because we are very tight on schedule. So we are not going to play a song.
1: Mother's Day song.
0: Mother's Day song.
1: Yeah.

बाद में विल स्टार्ट स्पीकिंग टू आवर गेस्ट और अगर आप हमेशा हमें अगर फेसबुक पे देखते हो देन डोंट बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज विल बी स्विचिंग टू आई मीन नॉट स्विचिंग टू बट विल ऑल्सो एडिंग द फेसबुक जो लाइव स्ट्रीम भी हम एड करेंगे फॉर 15 टू 20 मिनट्स एंड देन वी विल प्ले दैट जो हमने पहले बोला था हमारा जो अभी हाल ही में इंटरव्यू हमने किया था विद द ऑनरेबल मिनिस्टर टोड मैकले वो आपको हम सुनाएंगे